0: यह खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें। फिलिपाइन में पीर की सुबह आने वाले शदीद जल्जले के सबब कम अज कम 37 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए हैं। इसके अलावा हजारहा अफराद पनागार ढूंढने पर मजबूर हो गए हैं। इमदादी कारकुन अब भी उन 4 अफराद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो जनूबी मिंदानाओ में लापता हैं। ये इलाका जल्जले से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। मंगल के रोज इमदादी टीमों ने जनरल सांतोस शहर की एक मुनहदम सुपर मार्केट के मलबे से मस्कूरा 4 में से 2 अफराद की तलाश की भरपूर कोशिश की। उनके बारे में ख्याल है कि वो मलबे तले फंसे हुए हैं। जल्जले से पूरे मिंदानाओ जजीरे में बहुत सी इमारतें मलयामेट हो गई हैं। हुक्काम का कहना है कि 2,500 से ज्यादा मकानात को किसी हद तक नुकसान पहुंचा है और 30,000 से ज्यादा लोग पनागाह ढूंढने पर मजबूर हुए हैं। जनरल सांतोस शहर के एक बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे से मुसाफरों की मामूल की परवाजें मुअत्तल कर दी गई हैं। सड़कें, पावर ग्रिड और मौसलाती नेटवर्क भी मुतासिर हुआ है। फिलिपाइनी रेडक्रॉस का कहना है कि उसने इलाके में एक इमदादी टीम भेजी है। खित्ते में मजीद मुमकिन जल्जलों के लिए तैयारी की जा रही है। मुल्क के सेस्मोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहना है कि पीर से अब तक 1,000 से ज्यादा जल्जले आ चुके हैं और मजीद झटके भी लग सकते हैं। मई में जापानी कंपनियों के दरमियान तिजारत की जाने वाली अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। इजाफे की रफ्तार 3 सालों में सबसे तेज थी, जिसकी बड़ी वजह पेट्रोलियम से मुतल्लिका मसनूआत की पहले से बुलंद कीमतें थीं। बैंक ऑफ जापान का कहना है कि इब्तदाई प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स गुज़श्ता माह 1 साल पहले के मुकाबले में 6.3% ज्यादा था। मार्च 2023 के बाद ये सबसे बड़ा इजाफा है। पेट्रोलियम और कोयले की मसनूआत जैसे कि पेट्रोल की कीमत में 13.8% इजाफा हुआ, क्योंकि मशरक वस्ता में जंग के बायस खाम तेल की कीमतें बुलंद रहीं। नेफ्ता की कीमत में इजाफे के सबब पोलीएथलीन जैसी केमिकल और मुतलिका मसनूआत की कीमतें 13.4% बढ़ गईं। गैर आहनी धातों की कीमतों में 42.2% इजाफा हुआ, जिसकी जुजवी वजह तनाजे के बायस मशरक वस्ता में एल्यूमिनियम के पैदावारी मराकस को पहुंचने वाला नुकसान है। अमरीकी वजारत दिफा ने अपनी उन कंपनियों की फहरिस्त को अपडेट किया है जो बकौल उसके चीनी फौज से मुंसलिक हैं। नए इजाफे में चीनी इंटरनेट सर्च फ्राहम कुनंदा बाइदू और ई कॉमर्स का बड़ा इदारा अलीबाबा ग्रुप शामिल हैं। वजारत दिफा हर साल अमरीका में बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर काम करने वाली ऐसी कंपनियों की फहरिस्त शाया करती है जिन्हें वजारत चीनी फौजी कंपनियां कहती है। अमरीकी कानून के तहत पेंटागोन का इस फहरिस्त में शामिल इदारों के साथ लेन देन ममनू है। बायदू और अलीबाबा ग्रुप के साथ साथ बर्की गाड़ियां बनाने वाली कंपनी BYD और दीगर के नाम भी पीर को जारी होने वाली फहरिस्त में शामिल हैं। बायदू के तर्जुमान ने कहा कि कंपनी मजकूरा फहरिस्त में अपनी शमूलियत को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती है और वो इस फहरिस्त से हटाए जाने के लिए तमाम दस्तियाब ऑप्शंस इस्तेमाल करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगी। अलीबाबा ग्रुप ने एक बयान जारी करते हुए दावा किया है कि वो चीनी फौजी कंपनी नहीं है। उसने भी तमाम दस्तियाब कानूनी रास्ते इख्तियार करने का अज़्म किया। चीन ने हालिया बरसों में मिलिट्री सिविल फ्यूजन नामी कौमी हिकमत अमली के तहत फौजी और सिविलियन इदारों के दरमियान तआवुन को तकवीत दी है। खबरसा इदारे रॉयटर्स का कहना है कि पेंटागोन की ताज़ा तरीन फहरिस्त अमरीका और चीन के दरमियान कशीदगी को हवा दे सकती है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक दोनों ममालिक मुआशी और सियासी व जुग्राफियाई मुसाबकत में मसरूफ हैं।
1: और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नज़र। अमरीकी फौजी हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने के बाद अमरीका ने ईरान के खिलाफ नए हमलों का सिलसिला शुरू किया है। साथ ही ईरान का कहना है कि उसने इन हमलों का जवाब दिया है। और चीन के सदर शी जिनपिंग ने मंगल को शुमाली कोरिया का अपना 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल कर लिया। ये वाजह नहीं है कि आया शी और शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने शुमाली कोरिया की जौहरी पेशरफ्त पर बातचीत की या नहीं। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुई। मजीद खबरों, तबसरों और तेजियों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 10 जून बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रीला चैन और वायला खवानों से सुने समाचार। अमेरिका के एक सैन्य हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ताजा हमले शुरू कर दिए हैं। वहीं ईरान का कहना है कि उसने जवाबी कार्रवाई की थी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मंगलवार को अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि लड़ाकू विमानों ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी वायु रक्षा प्रणाली नियंत्रण केंद्रों और निगरानी रडार स्थलों पर हमला किया। कमान का कहना है कि ये कार्रवाई अमरीकी सेना और व्यावसायिक जहाजों पर हाल ही में हुए हमलों के जवाब में की गई थी। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का कहना है कि ईरानी नौसेना ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के 5वें बेड़े पर स्थानीय समय अनुसार सुबह 2:30 बजे ड्रोन हमला किया। बुधवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि यह दुश्मन की कार्रवाई का जवाब था। अमरीकी केंद्रीय कमान के एक प्रवक्ता ने NHK को बताया कि ईरान का दावा झूठा है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पहले कहा था कि

लान ने जल डमरू मध्य में गश्त कर रहे एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि दोनों पायलट सुरक्षित और सही सलामत हैं और अमेरिका को आवश्यकता के चलते जवाब देना पड़ा। तनाव में उछाल ऐसे समय आया है जब ट्रंप ने कहा है कि वॉशिंगटन और तेहरान शांति समझौते को अंतिम रूप देने के निर्णायक चरण में हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार को उत्तर कोरिया का अपना 2 दिवसीय दौरा समाप्त किया। यह स्पष्ट नहीं है कि शी और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के बीच उत्तर कोरिया के परमाणु विकास कार्यक्रम पर चर्चा हुई या नहीं। कुछ विशेषज्ञ इस बात पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि चीन उत्तर कोरिया की गतिविधियों को शायद नजरअंदाज कर रहा है। किम के साथ हुई बातचीत के दौरान सोमवार को चीनी राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के साथ राजनयिक और सैन्य आदान प्रदान को मजबूत करने समेत आर्थिक, व्यापारिक और जन संबंधी आदान प्रदान बढ़ाने की अपनी मंशा व्यक्त की। दोनों नेताओं ने अपने देशों के बीच पारंपरिक मैत्री को बढ़ावा देने पर सहमति जताई। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थी कि शी और किम उत्तर कोरिया के परमाणु विकास कार्यक्रम के बारे में क्या चर्चा करेंगे। 2019 में उत्तर कोरिया में हुई शिखर वार्ता में शी जिनपिंग ने कहा था कि चीनी पक्ष कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निरस्त्रीकरण और क्षेत्र में दीर्घकालिक स्थिरता बनाने में सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। लेकिन हालिया शिखर वार्ता के बाद से न तो दोनों देशों की घोषणाओं में और न ही मीडिया रिपोर्टों में अब तक उत्तर कोरिया के परमाणु विकास कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है। विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की है कि चीन उत्तर कोरिया की गतिविधियों के प्रति अप्रत्यक्ष रूप से सहिष्णुता का रुख अपना रहा है। 11 जुलाई को दोनों देशों द्वारा मैत्री, सहयोग और पारस्परिक सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए जाने की 65वीं वर्षगांठ है। इस समझौते में कहा गया कि यदि किसी भी पक्ष पर सशस्त्र हमला होता है तो दूसरा पक्ष सैन्य सहायता प्रदान करेगा। शी और किम संधि की वर्षगांठ मनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने पर सहमत हुए। पर्यवेक्षक इस बात पर नजर रख रहे हैं कि चीन सरकार उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम और कोरियाई प्रायद्वीप से जुड़े अन्य मुद्दों से कैसे निपटेगी।

0: ये समाचार NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: सोमवार की सुबह फिलीपींस में आए भीषण भूकंप में कम 37 लोगों की मौत हो गई है, सैकड़ों घायल हुए हैं और हजारों लोग कहीं आश्रय लेने को मजबूर हैं। बचाव कर्मी सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र दक्षिणी मिंदानाओ में 4 लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने जनरल सांतोस शहर में एक सुपरमार्केट के मलबे के नीचे फंसे होने की आशंका में 2 लोगों की तलाश की। भूकंप ने मिंदानाओ द्वीप पर कई इमारतों को ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि 2500 से अधिक मकानों को कुछ हद तक नुकसान पहुंचा है और 30,000 से अधिक लोगों को कहीं आश्रय लेना पड़ रहा है। जनरल सांतोस में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नियमित यात्री उड़ानें रोक दी गई हैं। सड़कें, बिजली आपूर्ति और संचार नेटवर्क भी प्रभावित हुए हैं। फिलीपीन रेडक्रॉस का कहना है कि उसने क्षेत्र में एक सहायता दल भेजा है। इस क्षेत्र में और अधिक भूकंप आने की आशंका जताई जा रही है। देश के भूकंप विज्ञान अनुसंधान संस्थान का कहना है कि सोमवार से अब तक 1,000 से अधिक झटके आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। मई महीने में जापानी कंपनियों के बीच व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई। पेट्रोलियम से संबंधित उत्पादों की ऊंची कीमतों के कारण ये वृद्धि दर 3 वर्षों में सबसे अधिक थी। बैंक ऑफ जापान का कहना है कि प्रारंभिक उत्पादक मूल्य सूचकांक पिछले वर्ष की तुलना में पिछले महीने 6.3% बढ़ा है। मार्च 2023 के बाद ये सबसे बड़ी वृद्धि है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रहने से गैसोलीन जैसे पेट्रोलियम और कोयला उत्पादों की कीमतों में 13.8% की वृद्धि हुई। नेफ्था की कीमत में वृद्धि के कारण पॉलीएथिलीन जैसे रासायनिक और संबंधित उत्पादों की कीमतों में 13.4% उछाल आया। अलौह धातुओं की कीमतों में 42.2% की वृद्धि हुई, जिसका आंशिक कारण ये था कि पश्चिम एशिया में एल्यूमिनियम उत्पादन केंद्रों को संघर्ष में नुकसान पहुंचा है। अमरीकी रक्षा मंत्रालय ने उन कंपनियों की सूची संशोधित की है जिनका संबंध चीनी सेना से है। इस सूची में चीनी इंटरनेट सर्च सेवा प्रदाता बाइडू और ई कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अलीबाबा ग्रुप को शामिल किया गया है। रक्षा मंत्रालय हर वर्ष ऐसी कंपनियों की एक सूची प्रकाशित करता है जिन्हें वो चीनी सैन्य कंपनियां बुलाता है और जो अमरीका में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं। अमरीकी कानून के तहत पेंटागन को इस सूची में शामिल कंपनियों के साथ किसी भी प्रकार का लेन देन करने की मनाही है। बाइडू और अलीबाबा ग्रुप के अलावा इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता BYD और अन्य कंपनियों के नाम भी सोमवार को जारी सूची में शामिल थे। बाइडू के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी इस सूची में शामिल किए जाने को पूरी तरह से नकारती है और सूची से अपना नाम हटवाने के लिए उपलब्ध सभी विकल्पों का उपयोग करने में संकोच नहीं करेगी। अलीबाबा ग्रुप ने एक बयान जारी कर दावा किया है कि वो कोई चीनी सैन्य कंपनी नहीं है। उसने हर कानूनी कार्रवाई करने का भी संकल्प लिया है। चीन ने हाल के वर्षों में सैन्य नागरिक गठजोड़ नामक राष्ट्रीय रणनीति के तहत सैन्य और नागरिक उद्यमों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया है। रॉयटर्स समाचार एजेंसी का कहना है कि पेंटागन की नई सूची अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ा सकती है। उसके अनुसार दोनों देश आर्थिक और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में उलझे हुए हैं।
2: इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से यह समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।